0: अध्ययन अध्ययन की नवफति हो रही
1: मेरी और बड़ा हास वे
0: अनेक कठेस्ट क्या रे भी मता मन्हा मन्हा हाँ द देरा वे फ़ये
1: आहने के वार गया कुछ जे आहने न माला में कुरने
0: हास नो एब स्पेल द टी प्रोग्राम अडवे ही मती कहला हुरी हाँ कंका मंहा लोहो दंगे न
1: स्पेल द टी ये
0: आं मिकाहल कंकं दिमावे मा कांतक कुरे विदान गोयतं ए प्रोग्राम उंगे गेने
2: स्पिल द टी हमे गणि दिवे राज्य गाडो
3: आदित्य दो हो गे हवेरो हतरगड फनरागा
4: रिपीट बुद्ध दो हो गे हवेरो हतरगड फनरागा
3: आदि बोडास्पति दो हो गे हवेरो फहद जहाडो
0: एंहा सतरस देका सालिस नुए किलो हर्ट्ज मीडियम वेव अदे अड्डिया नुए मेगा हर्ट्ज एफएम बैंड हमें कन दिवे ही राज्य के अडुं इंतजार को लवा
5: स्पिल द टी
6: मीजे होनी है कंतक दिल लाहे कन मितनों एम में इंची विस्कुरिया के जस्सा देवे मिवारों नुकुरिया मीम पिकअप है विस्कुरिया करनु चहें।
7: एक्सक्यूज, तांकोले तक का फार्न नंदा।
6: दत्ता, मावेस मिवार ना वो तांकोले नो दिविगिन ने।
7: आहरेंगे के दोरुमती के तीनी, तिया पुरे तांकोले कुरिया व्यस फाहते व्यस जस्सा दिम आह नगिया वादे वेनी।
6: ऐहं ता, सॉरी।
7: दरफ्ला, समा, तीता इंदेगे कोच इत्ता किए वेनी। बेरुंगे मेवे अडुफक गंडु लाहिकेन्नु कियावाका
8: मम्मा वके मच्चंगेरेस कियेवेता जेहिकेन हुरिगेन लावजहा शोकुले अडुनु एहेन अडेन्नीवे अति एगे मतीबा हदा अडुफक गंडा हेति बोलुकरि सायबा
7: देन की कुरानी दरफुला एहेले कुडामीहा इरुकुले नुआन निंदावा फमिनकु मेले सिहारय अदेमिउलुनी एन हेलम वायरा नमादा वेसारा
9: हमें में माहौल दे गायम करूँगा, को मैं मीह को इस एमीह के फर्दी जिम्मा अदा करूँगा।
10: दुम्फत के इस्तेमाल करने की आलगों में गे हिता

0: अध्ययन की नवेफति हो रही
1: मेरी और बड़ा हास वे
0: अनेक का टेस्ट क्या रे भी मता मन्हा हाँ द देरा वेफाये
1: आहने के वार गया कुछ जे आरे न माला में कुरने
0: हास नो एब स्पेल द टी प्रोग्राम अडू ही मती काला हुरी हाँ कंका मंहल लो हो दंगे ना
1: स्पेल द टी ये
0: आं मिकाल कंकं दिमावे मा कांतक कुरे विदान गोयतं ए प्रोग्राम उंगे गेने
1: स्पिल द टी हमे गणी दिवे राज्य गाडो
2: आदित दो हो गे हवेरो हतर गड़ फनड़ागा
3: रिपीट बुद दो हो गे हवेरो हतर गड़ फनड़ागा
2: आदि बुडास्पति दो हो गे हवेरो फहद जहाड़ो
0: एंहा सतरस्ते का सालिस नुए किलो हर्ट्स मीडियम वेव अदे अड्डिया नुए मेगा हर्ट्स एफएम बैंड हमें कने दिवही राज्य के अड़ों इंतजार को लवा
4: स्पिल द टी
5: कानूना कवायतों मिनिमम कमा असासे हक्को दर खातिर को दरी किया मी वरका
6: कानूना गवायतकों रायी तुंगे सलामता रखा तेरे कंकाशवर को दिली कीने
5: कानूना गवायतक हुरमे तेरे कोंगी तंजहिनी कीवे
7: कानून तका गवायतक अहुलवेरवे हेलुं तेरे वुमकी कोंबे फारुदेगिवेस अमीला रखा तेरे कमशा मुल मुझतमाओगे हमजहुमा नुहान बेनु तेरे कमे
6: कानूना गवायतक गुलेगोतुं त्याबे फुलुं बेनु वासुवाल तक जवाब के नेस्तिलमा दिवही राज्य गाडुंगे नेस्तेनी
5: तरह
6: मेहोनीर दोहे गरेगंड नुए जहायरो स्टूडियो इन वगुतु
5: एंहा 741 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव आदि 89 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड
6: हमे कनी दिवि राज्य गडो
8: दत्ता कोलम नोरे मे गोंडी गई शींदे आहारे कोलम होरेला फाना दत्ता ई शींदे
9: हा दे अंगळे खोक्को बरा बडा शुक्रिया
8: ಕೊದ್ದೆವೆ ಕುಡ ಕುಡ ಹೆವ ಕಮಕುಂ ಎಹೆ ಮೀಹೆ ಗೆದತರು ಅಮಾಂವೆ ಉಫಾವೆರಿ ವೆದಾಣೆ
10: ದಿವಹಿಂಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ವಂತಕಂ ಕುರಿಯರು ಆದೆ
11: ದಿವಹಿಂಗೆ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತೆರಿಕಂ ದಕ್ವಾದೆ
10: ದಿವಹಿಂಗೆ ಮಾಜಿಗೆ ಮಂಜರ್ತ ಸಿಫ ಕೊದ್ದೆ
11: ದಿವಹಿಂಗೆ ಅಡು
10: ದಿವಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
11: एंहा 47 के 40 9 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव
10: 89 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड